कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

आन अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति ज्योत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सीती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

संतोह शब्द धरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

भगत हां तेरी बिखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्योह तिखी वालोह निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित्र माता पिता कटंब सहत सियो पवित्र संगत सबाइया।

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज नाय उपजै, विन सहजै सहसा न जाय, न जाय सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाय, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जूए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म

परनै गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते गे मुख होए बिन सत

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जा तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम महजोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, कह अनेक रूप नाओ नव निद, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, एहु साचा सोहिला, साचे कर गावहु, गावो ता सोहिला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बजावे, एहु सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, कह नानक सच सोहिला, सच्चे घर गावे, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे।

भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर भाणै अपनै बह परवार सदाया मत मैं पिछै कोई रोसी। सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे। सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई।

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिक्खा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई परम तड़ा, कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा।

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगानी सारंग पाने जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसे का माणु कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसे दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणिए कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिनस अरादीय जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधु अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधिया, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरिया, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल कूर रहया, एक निमख मनहु ना विसरै। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्ब गुण जगदीसरै। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे नारायण, दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यों रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकी उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर। आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गावहु वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया।
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो, सलोक उद्यम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक सरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो, सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जा का वड प्रताप, संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया, कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानक ओट तेरी, राख पूर्ण काम जियो, सलोक शरदा लागी संग प्रीत में, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए, कर गहलीनी साजन है, जन्म जन्म के मीत, चरणहां दासी कर लई, नानक प्रभ हित चीत, शंत रुत बरस सहेलिया, सावन पादवे आनंद जियो, धान उन्नम बुठे, जल तल पूरिया मकरंद जियो, प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई, हर नाम नवनिध ग्रह भरी, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर कंत

है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मेलन हार। बिन मिल बे शांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए। हर साध शरनागति, नानक आस पुजाय। संत रोत शरद अडम्बरु, असु कत के हर प्यास जियो। खोजंती दर्शन फिरत, तब मिलिए गुणतास जियो। बिन कंत प्यारे नह सूख सारे, हार कंगन त्रिक बना। सुंदर सुजान चतुर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत उत दह दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो। बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमण राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बिछोह जियो। श्लोक हर तन पाया सुहागिनी, डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माग फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रिपवन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री धर कंत जियो। श्लोक संत सहाई जी के, पवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए, नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे, से सूरे से वीर, नानक तिन बलिहार न, हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, टिलना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्ब गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आद कौ आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महा

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग पै ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

पछाण है। यो कर महल समझापै प्रभ नेड़ हर दूर ना जानू। एको सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा। नानक एक समाई इस करते को क्यों गह राखो। अफर्यो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी। झूठ ठगौरी पाई लभ लोभ मोहताज विभूते। इब तब फिर पछताई।

गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोई।

मुख सोए रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकारी।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जानहि मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय मीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजूनी, अस्थिर चीत समाध सुगुनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धीआं, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ घर मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यो घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना। लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिर काल। काया सीजै पई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची खोट गुर कहया साकार कमाव हो गुर की करनी काहे ताव हो नानक गुरमत साच समाव हो टूटै नेहो के बोलह सही टूटै बाह दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटै गंठ पड़ै विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवै टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठहक मुई अब गुण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपण दीठी कंत सुजान डर राख्या गुर आपण निरपौ नाम बखान डूंगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखै सब कोई जय भावै तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनकै हौ बल जाओ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाओ मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाव जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो ताहसी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना हो।

साचो ठाकुर मन वसे हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवे क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवे छुटे निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है।

प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर सिओ रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाण सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाईए पारू चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे साच कहो तुम पार गरामी तुझ क्या बैसन दीजे जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासु अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासु सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारु रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाईए गुरुद्वारु इह मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम आधारू आपे मेल मलाई करता लागे साच प्यारू हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उदयानी कंद मूल आहारू खाइए औदू बोले ज्ञानी तीरथ नहाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई गोरख भूत लहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चेतना डुलाई
बिन नावे मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच वपारो। खंडत निंदरा अल्प आहारम, नानक तत् बिचारो। दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंथा। बारह अंतर एक सरेब हो, खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइय पुरखा, बहुड़ चोट ना खाइय। नानक बोले गुरमुख बूजै, जोग जुगत इव पाइय। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा, हौमै ममता दूर करी। काम क्रोध अहंकार निवारै, गुर कै शब्द सो समझ परी। हिंथा झोली भरपुर रहया, नानक तारै एक हरी। साचा साहिब साची नाई, परखै गुर की बात खरी। हुंदौ खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी। सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल। कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता। कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई। कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता। मनमुख बिन सह आवे जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई। क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा। क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत बिचारै सो गुरु हमारा। दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हों मैं मेट समाए। सुन निरंतर दीजै बंद, उड़ै ना हंसा पड़ै ना कंद। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी। किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी। गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। चित बिद आसा मनसा खाई, चित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाइय सार, नानक साचा करो बीचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते इहो मन लाया। मन साया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइय सार, नानक तारे तारन हार। आद को कवन बीचार कथियले, सुन कहां घर वासो। ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइय। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइय। गुर कै शब्द हउमै बिख मारै, ता निज कर होवै वासो। जिन रच रचिया किस शब्द पछाणै, नानक ताका दासु। कहां ते आवै कहां एहो जावै, कहां एहो रह समाई। एस शब्द को जो अर्थावै, तिस गुर तिल ना कमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारू। आपे सुरता आपे करता, कहो

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकल्पत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बिचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाइए अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बिचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाय, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मूख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन

आपना पुन्न घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तथाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबाते कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मनमुख न बूझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत न चीने मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नगरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाय सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसे विचो भरम गवाय तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिए इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू अंतर

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध कित अस थिर रही है कित भोजन तृपतासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल न ग्रासै रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राखिया शब्द न भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपै आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख होमै विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियले गुरमुख मूल पछाण रहै नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लहै सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लै।

सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अम्बह सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख।

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख

ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावे तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावे, माया नू फिरे तपा सदावे, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मुख अंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे एहो तप काले, सतगुर नो मिले शब्द संभाले, सतगुर की सेवा एहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर पहन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में परम, तिस दै दिते नानका, तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार भरम गया ता जागिया, चूका अज्ञान अंधार।

मनमुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार बिन हर भगती सिंगार करह नित जम्मे है हुए खुआर सह सारे विच सोभ ना पाईनी अगै जी करी सो जाने करतार नान

यार सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान भये जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नजरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन बात सपीती नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुरु दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरख है खटिया भाव भावै आवो भावै जाओ शास्त्र वेद न माने कोई आपो आपै पूजा होए काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई वड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाई लोक महावह चाड़ी खाई चौका देकै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

सो जाए सियाने, होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहू चरह, जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवे, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला, सो गृही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

है संताप, अवहट पट्टन में है भीख्या करे, सो अवतूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध उर्द करे निरंजन वास, चांद सूरज की पाए गंड, जिस उदासी का पड़े न कंद, बोले गोपी चंद सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो पाखंडी जे काया पखाली, काया की अगन ब्रह्म पर जाली, सुपने बिंद न दे चरना, तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मह रूपै थम, अहनस अंतर रह ध्यान,

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा।

इंद्र रो आया, परशुराम रो वह घर आया, अजय सुरो वह भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोए राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई, रोए है पांडव पये मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर, रोए जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी पया, रोए है शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कन पड़ाए, कर कर मांगे है भीख्या जाए, रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रतना।

सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहि, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहि। महला दूजा साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरत जे सौ आखै कोय। जितै सो वस्त ना जापई आपे वरतो जान, नानक गाहक क्यों लय सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे ताड़ी लाइन सब मह परवेसा। आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा। सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावण रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता। हल विचार वकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चेत।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाएगा, किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक किन

नानक जो मर जीवया सहला आया सोए महला तीजा, ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन, सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन, रव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला, सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कित मुख सलाहिए जिस रखै कृपा धार रिजक समाहिए कोई ना किस ही वस सबना एक धार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणिए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिनकी धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हौ तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया
पाया तुर संयोग, नानक पाया सच नाम, सद ही भोगे भोग। महला पंजवां, मनमुखा केरी दोस्ती

जाने तिचर रखन गांड जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

उबरे जो सतगुर सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम क्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी कु सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण दुर्जन सेती निहुर चायू

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी तेरे औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किलविख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्स मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

ओ हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सुभा विचार।

प्यारे पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन गुर ते मा

साई सब सैनो कृपाल संभाली साहे साय बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अर

पाई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

होगा हर का आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे

रंग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझे कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसै जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खट्टे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हू के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले ओ बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओह अगम अजिता ओह प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्यो हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर बैसह गाहि धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाहि महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संगक संगी बैसती तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया

आप वरन्या धन सो तेरा थान जिथे तू उठा धन सो तेरे भगत जिन्नी सच तू डिठा जिसनो तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर भेटे ना।

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यो रंग लाए औगण कट मुख उजला हर नाम तराय जन्म मरण भौ कट्यों फिर जोन ना पाए अंध कूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाए नानक बख्श मलायन रखे गल लाए सलोक महला पंजवा महब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवा अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हबथाई वण त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या।

दलाली सतगुरे आखै सच्चा करे सा बात हुवै दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होए जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवागौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्मत

क्या सलाही सच्चे पातशाह जां तू सुगड़ सजान दान जे सतगुरु भाव सी सो सत्ते दान नानक हमदा सत्तर सिर।

ग्रहण में लो। गुर का शब्द गुड़ की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दी नरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद पर तन मन देव, जो मद दे कलाली रे। रहाऊ पवन चतर दस पाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औधू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मद रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

कै कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभ तिस सूला, को काढन को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

सो रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर का सुहाग जेहे मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै जाके पाए जगत सब लागै।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बिख काडी ले मार जेहे सिमरन तेरी गत होए सो सिमरन राख कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख उतार गुर प्रसादी।

जाहि फलाई जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार

ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पोंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मै आसा सस तीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकत बक शब्द सुनाया।

ने गुडी आकाश मदे परम यले पंच जना स्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिंह राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जपह आराध, सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गावह, मुख बोलह नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर मह, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्यावह, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जप्यो गुरबचनी, हर तारी हर किरपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेलो हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे।

अवगनियारी पाथर भारी हर तारी संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारी हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

मालक स्वामी, हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी, हौ बल बल बल तिनगे। भवन भवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक को दया प्रभ धारो, हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद पय हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाऊ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवे कृपा करहु जिस पुरख बधाते, सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान ध्याना,

जित निमखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर खुले ब्रह्म पीत।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किस पेख्यो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीदो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत ना कबहू थोरी, नट महला पंजवा, मेरे मन जप जप हर नारायण, कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते, आठ पहर गुण गायन, रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल बिख पाप गवायन, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायन, जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल न लायन, दुइ कर जोड़ नानक दान मांगै, तेरे दासन दास दसायन, नट महला पंजवा, मेरा सर्बस नाम निदान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाउ, सुख दाता दुख भंजन हारा, गाउ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान, क्या गुण तेरे आख बखाना, प्रभ अंतर जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खी।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना संभारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत सियो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो दसिए तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नगर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई ब्रह्म भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारी प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचे जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारी ज्यों ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोले है पर उपकारी संते संत मिले मन बिगसे ज्यों जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं

आदि अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाऊ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्तके धुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहूं लागू।

देवोह दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मझार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसे सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मो असथूल आल जाल बिकार तज सब।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गुआई।

सहज सुख होई, घर छड़ने रह ना कोई, किस खाजै किस धर जाइए, जे बहुड़ दुनिया आइए, सज काया पट हंडाई, फरमाइश बहुत चलाई, कर सेज सुखाली सोवे, हथी पौंदी काहे रोवे, घर घूमण वाली पाई,

लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई भया मनूर कंचन फिर होवै।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्योरे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्योरे एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरण।

नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

खैर मनोवा, जपत रहा तेरा नाव। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे हैं तुद वडे आई। आद जुगाद दया पत दाता, तुद विन मुक्त ना।

तौ दीवाना जानिए जाय का कार कमाए हुक्म पछाण खसम का दूजी अवर सियाण पकाई तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कौ अवर भला संसार मारू महला पहला एहो धन सर्ब रहया भरपूर।

माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किने परम गत पाई। भणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता एहो तन पाए। मारू महला पहला सूर सर सोस लै, सोम सर पोख लै। जुगत कर मरत सो संबंध कीजै, मीन की चपल सियो जुगत मन राखी। उड़े नह हंस नह कंध सीजै, मूड़े काचे परम भुला। नह चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ, अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै। प्रांत तज छोड़ तौ अप्यो पीजै, मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है। उड़े नह हंस नह कंध सीजै, भणत नानक जनो रवे जे हर मनो। मन पवन सियो अमृत पीजै, मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांजी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम मैं जलिया मनो विसारी।

गुनहा बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हर की चरनी लाग रहा, विचो हो आप गुआए। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याग।

बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाउ सुर नारे गण गंधर बेज पियो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई अकथ कहानी, संत जना मिल पाया। सुन अकथ कथा मन पाणी, मेरा मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी, वडभागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

गुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

भाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरी अड़े।

हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेव

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है अत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रु बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमक मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी।

ले मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

सुनत भव तरी ता स्यो रंग न लाव सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय शीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय सूर मुक्ता ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह

तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया,

अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा। मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आव है तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाउ। रूप रंग खुशियां मन पो

माया रंग बिरंग खिने मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

को मात गर्भ में है जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकिए चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहो बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा हमे मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक मह पाया कह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को

अवदारन जिस भावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढन हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मारू महला पंजवां कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आज्ञाकारी।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल त्यानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिन काठाना गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखे ओ माथ डूबे नाम बिन घन सा।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुरागियो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

जल मत है तत लोड़ अंध ज्ञाना गुरमती दद मती है अमृत पाई है नाम निदाना मन मुख तत ना जाननी पशु माहे समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जमै वारो वार गुर कै शब्दे जे मरै फिर मरै ना दूजी वार गुरमती जग जीवन मन वसै सब कुल उदाहरण।

ना सकई सच रह लिवलाई जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हम जाई तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार जमन मरन वसारिया मन मुख मुगद गवार।

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

कै सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे किस

साच पठायो लेख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरण दे।

सच कार कमाई विचड़िया कौ मेल लय गुर कौ बल जाई लाले गोले मत खरी गुर की मत नीकी साची सुरत सुहावनी मन मुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सच धीरक तुरकी सच है बैसने उठना सच भोजन भाखिया कित सचै बितो सचा साचा रस चाखिया साचै घर साचै रखी गुर बचन सुभाखिया मनमुख कौ आलस घणो हाथे ओ जाड़ी हाथा चुगै नित चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज ताड़ी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जीओ जल बलो।

कार है तुर खसम फुरमाई लालै हुकम पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है गुर

सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे तां सेवीऐ सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

आई नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई मारु महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द।

चलना मुखे अमृत नाम मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है

खार समुंदर टंडो लिया एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी टिस खावे गुरसागर सत

सतावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटही हुक्म ना बूझै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित ला

गुरमुख नाम निरंजन पाइए, अफरे उपार अफार टरे रहाउ। ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करूं हरि। तू दाता दयाल सबे सिर, एहन सदात सुमार करी। चार पदार्थ ले जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास धरी।

पावै एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कटंब स्यो प्रीत करे खावै भोगै सुन सुन देखै पहर दिखावै काल करे बिन

हो मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बरू दो नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा तन कंत पछाणिया सुख सुती निसडेह पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक वलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

वेद संभाल है बिख भूले लेखारी कल्लर खेती तरवर कंठी बागा पहर है कजल चर है यो संसार तिसै की कोठी जो पैसे है सो गर्भ जर है रैयत राजे कहां सबाई दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवा अष्टपदी।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे गुर के

जन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

तेरे दिन यो पायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान स्नान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

पितर सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कस न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इह मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभु कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने, घट घट राम हियाली है, संसार मह सहसा व्यापै, कथ कथा गोचर नहीं जापै।

मन माही, इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागे तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मान, बुझ हुक्म दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे।

काल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर

चित चल है पर कर जो है घर नहीं पल है काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द पत जाई गुरते बूजै त्रिपवन सूजै।

आपे सुर्ग मच्छ पहला आपे ज्योत स्वरूपी बाला जटा बिकट बिकराल स्वरूपी रूप ना रेखिया काई हे वेद कते भी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता सगले सैले उपाय समाई।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई है।

राई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई। परपुर धार रहया निह केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

प्यारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे पवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त बढ़ाई।

कह राती। हर प्रभ संगी पहो ना परांती, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवै चलावह, हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मन

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगतां का गुण।

मन तन अर्प मिलै जग जीवन, हर स्यों बणत बनाई। प्रभु की गत मित कोई ना पावै, जे को वड्डा कहाए वडाई खावै। साके साहेब तोट ना दाती।

उस्तत करह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुलता।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हउमे दोह मार्ग पचह पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई हे आगे बिमल नदी अगन बिख झेला तिथे अवर न को

एकहु कर नंदर विघ्न नाही गुरमुख तर तारी इउं पव जल पार लंघाई हे देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अब नासी।

कर वास न पाई पेयड़ सिर माराही खाजे पेंजे रली करीजे बिन अब भगती बाद मरीजे।

अंग शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंजे पत होई आपे बख्श लए किस पावे हौ मैं गर्भ निवारा ही गुर किरपा ते हुक्म पछाणे।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बिना ही गुर सरवर हम हंस प्यारे।

अमृत रस पाई, जम जगात नाही कर लागै, जिस अग्न बुझी ठर सीनाई, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी, अहनस भुगै चोज बिनोदी, उठ चलतै मता ना की नाही, श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै, पौन पानी बह संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाही, नाम विसार दोख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मह गोते खावे, ज्यों जलते बाहर मीना है, चौरासी नरक साकत पोगाई है, जैसा की कहते सो पाई है, सतगुर बाजो मुक्त ना हुई, किरत बांधा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की नाही, मीत सखे केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर

मुखर ले चल्लुहु दर्शन पावहु सहज महल्लुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्ज बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जमदारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यों बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरिया राहि मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

तुम्हारा, मन तन झूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगाह हारा ही, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम बेसरन परेके, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगाह प्यारा ही, राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जप

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरे जम जोहन लागे। सब सुख जाहे दुखा पुन्य आगे, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो।

जिस कहो सतगुर मेल मलाई, तिस चूका जम पै पाराही, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस महराम रतन लै चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचाराही, सत संतोख रहो जन पाई।

ताकत कूड़ कपट महतीका अहनस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात न मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहो अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला साकत दुर्मत डूबह ताजह गुर राखे हर लिवराता ही आप तेज वाए पृथ्वी अकासा दिन मह पांच तत् घर वासा सतगुर शब्द रह रंग राता तज माया हो मैं प्रांता ही इह मन पीजै शब्द पतीजै बिन नावै क्या टेक टकीजै अंतर चोर मुह घर मंदर इन साकत दूत ना जाता ही दुंदर दूत पूत पिहाले खिंचो तान करह बेताले शब्द सुरत बिन आवै जावै

ताही साकत फांसी पड़े अकेला जामवास किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई ऐथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सलले सलल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सक

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिर जनहारी जिन तार चक्कर

आपि अकथ कथा बुद्धताहि जन्मे कहो वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

है, राम नाम घट अंतर पूजा, अवरना दूजा काहा है, ओढ़ना कथन है सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, दरगाह पहंदी जान सुहेली, हुक्म सच्चे पातशाह है, क्या कही है गुण कथ है कनेरे, अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे, नानक साच मिले पत राख हो, तू सिर शाह पातशाह है, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गाड़े अंदर।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाईंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाईंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीप कराखी सस कर सूर समाईंदा पंखी पंच उडर नहीं तावह।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एकंकार वसै मन पावै हम

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

हुक्मे धरती तौल सिर भारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाएंदा हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदाफन।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई। इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे। इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी। सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई। त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी। उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए। सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्म

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराली शब्द रत्ते हर रस मत वाली रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ताको धुन उपजै शब्द जगाया तू एक अंकार नरान मराजा तू आप सवार है जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थर तान सुहाया

शब्द विचारा सच्चा महल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार मरालम प्रभ।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभतारी घट घट रब रहे बनवारी।

कुल निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस।

हो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन अहो नानक पूरा पाया सच बिन पवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जम पुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईए बिन गुर राम नाम क्यों त्याईए गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाईए नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै जिन्हो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया।

निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुभव पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ पंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पव जल भारत राया एहो पव जल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी है पांच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव कर

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तृष्णा यज्ञ जल है संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठोर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेवन से वड भागी, साचे नाम सदा लिब लागी, अंतर नाम रव्या नेह केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाई, निर्मल नाम वसे मन आई, सतगुर अपना सद ही सेवह, हम मैं विचों जाई है, गुरते बूझे ता दर सूझे, नाम मिहूणा कथ कथ लूझे।

ना किशु ना सूजै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटाम्ब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजे है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

आवै कोई, बिन सतगुरु को नाउ ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझै।

आपे पाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेव है से जन साची, मनमुख सेव न जानन काची, आपे करता कर कर वेखै, ज्यो पावे त्यो लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमह दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो निवलाई है। जो तिस भावे सोई करसी, आपो हो आना किस होसी।

मेहरवान मधसूदन जिस दा हुक्म ना मेटिया जाई से वड भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू देहे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है सब जग है तिस ही कह चीर है सब कट भोगवै सदा दिन राती

बिनसै तहत न लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूजै, जिस अंतर नाम नवासी है, सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पूजन सच आधारा, सदा त्रिपत पवित्र है पावन, जित घट हर नाम नवासी है, हों तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावह अन दिन जागे, साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना हर

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जो नी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मुँह लै बोल है, ना हम गुण ना सेवा सादी, डुबदे पात

आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा सच

माया सूते अपना घर ना संभालहै अंत बगूते पर निंदा करहै बहु चिंता जालै दुखे दुख निवासी आपे करतै कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल।

सुख पाया नाए साक्याय अमृत पी जाए तिल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेवया शब्द विचारा संकच आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाए माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै।

कर्म कमावै। सतगुर भेटै तां मुक्त पाईऐ, हर हर रसना पीजै ही। मनमुख अंतर भगत ना होई, गुरमुख भगत

वेद बाद सब आख वखाण है, ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है। पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही। मारू महला तीजा, सच्चा सच्चा तख्त रचाया। निज कर वस्या तिथै मोह न माया, सद ही साच वस्या घट अंतर। गुरमुख करनी सारी हे, सच्चा सौदा सच वापारा। ना तिथै भरम ना दूजा पासारा।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है। हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

जिन गुर का शब्द पछाता ही एक मूल लगे उन्नी सुख पाया दानी लागे तिन जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे।

तह तोल ज्यो भावै त्यो राखह रहना गुरमुख को जाता ही जात पाणा ता सच्ची कार लाई अवगण छोड़ गुण माहि समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समय प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द न बुझे आना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जियो राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा,

वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर स्यों चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राता ही जिसनो नदर करे सो गुण निद पाई हम मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण का एको दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

आई रत्न अमोलक अग में अपारा कीमत कवन करे विचारा गुर कै शब्दे तोल तलाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगमय गोचर कीमत नहीं पाई आपे अगमय अथाहाई आपे सच्चा सच वरताई।

सच्ची नाई, गुरमुख देव मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई।

पारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

गुर सेवे घोर अंधारा, बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्दे लाहाही। दुख सुख करते तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिपतो वरते, मनमुख का क्या विसाही। से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है। पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है, जम काड लएगा साहाही। अफरयो जम मारिया न जाई, गुर कै शब्दे नेड़ न आई। शब्द सुने ता दूर हो भागै, मत

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, नानक जन

अगम अपारा तिसदाय अंत न पाइए पारा वारा गुर प्रसाद रविया घट अंतर तित घट माते अगाहाई सब मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन देंदा रिजक संबाहाई पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत पाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर चाह पात चाहाई सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

आई कूट मदे किसै बुझाई गुर कै शब्द रत्ती रंग लाई हर सलाह है सदा सुखदाता हर बख्शे भगत सलाहाई सतगुर सेव है से जन साची जो मर जम है काचन काची अगम अगोचर वि परवाह भगत वच्छल आथाहाई सतगुर पूरा साच दृढ़ाई सच्चै शब्द सदा गुण गाई गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिखदा सहाई सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाई अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई मन हठ कर्म फिर जोनी पाई बिख्या कारण लब लोभ कमावै दुर्मत का दुराही पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई गुर कै शब्द हर नाम चित लाई मन तन हर रविया कट अंतर मन पीनै भगत सलाहाई मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाचै पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

वस्य काट यंतर सो काट निर्मलता ही सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गावे है आपे बख्शे शब्द मलाई परमलवा।

पाए, बिन गुरदाते कोई ना पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहाए, से जन मिले तुर आप मलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाए, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याएन, गुरमत सील सनाहाए, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया घट अंतर, छोड़िया माया का लाहाए, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याएन सदा सुख पाएन, निश्चल राजत नाहाए, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द है कारज के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजे

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर सिउ सद ही रह समाए, गुर कृपा ते मिले वडियाई, होमे रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द न कमाए, अंतर रोग महा दुख भारी, बिस्ता माहे समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, कट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवे सो तत बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़े है बाहर तावे है, मन मुखे अंधे साधना पावे है, अन रस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

ए बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाए मन ही मन समाएंदा सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया हम मैं विचो मोह चुकाया मन निर्मल फिर मैल ना लागे दर सच्चे सोभा पाएंदा आपे करे कराए आपे आपे वेख थापे उथापे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे सच सुन लेख पाएंदा गुरमुख सचो सच कमावे गुरमुख

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

आद जगाद दया पत दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। तुदनो सेव है से तुझ संभाव है, तू आपे मेल मलाएंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

अपना आप पछाण है आपी, गुरमति आप बुझाएंदा। पाताल पुरिया लोह अकारा, तिस विच वरतै हुक्म करारा।

सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता ज्यों पावे तिवें चलाएंदा सिमरत सा

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे सिंह चित लाएंदा। बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा। कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा। करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे। गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाइय बिन लावह दुख पाईंदा आप करे तै आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई गुरमुख होवह से बंधन तोड़ह मुक्ति कै कर पाईंदा गणत गण सो जले संसारा सहसा मूल ना चुकै विकारा गुरमुख होवै सो गणत चुकाई सच्चे सच समाईंदा जे सच दे ता पाई कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाईंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल हुआ सहजी सहज समाईंदा अंतर लोभ मन मैले मन लाई।

गुर कै पाणै चलै दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वस न हुई काम क्रोध जलै सब कोई।

सतगुर सेवय सहज अनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिए दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरा भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा। किन सुख पाया जो तुद पाई,

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर ना आवे।

वा पारा निश्चलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेव्यो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ न आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेख सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदय रखो उरतारी गुर कै शब्द सदा सलाई मिल साचे सुख पाएंदा सो चेते जिस आप चिताई गुर कै शब्द वसे मन आई आपे वेख आपे बूझे आपे आप समाएंदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाएंदा एह काया पवित्र है शरीर

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाले, नाम ना चेतै बद्दा जम काले, दूजै पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मनह

आई हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई, सहजी सहज मलाईंदा, सच्चा महल सच्चे भंडारा।

आपे मेल मलाए आपी शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

हर चरणी लागी, दूजा भाव चुकाया। हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई। अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

सारा, मनमुख अज्ञानी अंधारा, धंधे धावत जन्म गवाया, बिन नाव है दुख पाया, कर्म हुए ता सतगुर पाए, हम मैं महल शब्द जलाई, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

पूरै कर्म त्याया। जत सत संजम जे सच कमावै, एह मन निर्मल जे हर गुण गावै। इस बिख मह अमृत प्राप्त होवै, हर जियो मेरे पाया। जिसनो बजाए सोई बूझै, हर गुण गावै अंदर सूझै। हम मैं मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरै कनेरी, मर मर जम्मै चुकै ना फेरी। बिख का राता बिख कमावै, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हम मैं किने ना मारी। जीवत मरै ता मुक्त पाई, सच्चै ना ए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, किस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

मारू महला तीजा नदरी भगतां लहु मलाए भगत सलाहन सदा लिवलाई तो सरनाई ब्रह करती आपे मेल मलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हउमै विच सद जलै शरीरा कर्म होवै पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाई सतगुर ते सुख पाया।

दुख पाया। आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी। गुर कै शब्द मरे मन मारी, हो मैं जाहि समाया। आवण जाने पर जब गोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह काय हो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

माही समाया करे अंदर को कर पाई गुर के शब्द सहज सुपाई उथे सोग वजोग ना व्यापे सहजे सहज समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पार ना पाए कोई सहजे गुण रवह दिन राती ज्योति ज्योत मलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत चुगह गुर शब्द निवासा उडह ना मूले ना आवह ना जाई निज कर वासा पा।

राम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अपागी। नानक तिनकी फिर गत होए, जे गुरमुख रह शरणाई। गुरमुख प्रीत सदा है साची,

अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है, जिनको करता तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरणी चित लाई है, जिस भावै तिसे

रतन मन परगट पया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुरु को सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी कर्म मिले सुख पाई हे गुरमुख नाम प्रगटी है सोए चहो

सोवै, गुरमुख नाम समाए समावै, नानक नाम त्याई है। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आखव खाणी। हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जीओ, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता,

तुझै पै करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जा।

गुर पद साद परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानिए। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्त कहाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी दिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रव राखे पाई हे। जी जंत को रिजक संबाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना, साध संगत निश्चो है तन्ना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगा।

कर चिंता गणत मटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वसो हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा

ग्रह पीतर जित उतर भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख वचन देह छोड़ ना जासाई फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच तप

है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरै, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवै, देह दान सबसे जंत लोवै, टूट न आवै पूर भंडारै, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचह सिद्ध साधक बनवासी, जाचह जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतुर स्वरूप सियाणा सोई, जो मन तेरै पावी जाहे, जिस चीत आवह सोवे परवाह, जिस चीत आवह सो साचा साहा, जिस चीत आवह तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे, तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरै लै टूटा गंडा, सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हम्यो चोल चोल पी जाहे, मरै नाही सद सद ही जीवै, अमर भया बनासी थीवै, ना को आवै ना को जावै, गुर दूर किया परमी जाहे, पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माहे समाणी, चढ़ै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहे, बारह कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वार हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भनिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबाना। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते

अर्थ लहिया जिसे आप पलाए सोई भूले सो बूझे जिसह बुझाएंदा हरख सोग का नगर एहो किया से उभरे जो सतगुर सरनिया त्रिहा गुणा ते रह निरारा सो

कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वे कह कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटह सब बंधन एहो परम मोह पर जालना जह राखै सोई सुख थाना सहजे होए सोई पल माना बिनसे बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिनसे अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारे आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना ऐसा कोवड़ भागी आया आठ पहर जिन कसम ते आया तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना एह बख्शीस कसम ते पावा आठ पैर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देख ना भूल गवारा मिथन महारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाए निह चले एक नारायणा गुरपूरे की पौ सरनाई मोह सोग सब परम मटाई एको मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरस है बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपूरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साह भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता सत पुरख सत गुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायना पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु पारस जब भेटै गुरपूरा तां पारस परस दिखायना कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाई हौ बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना गुर की महिमा वेद न जान है तो शमात सुन सुन वाखाण है पार ब्रह्म अपरम पर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना निर्गुण को
संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहलै लाए पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पाएना बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा सिमरह खाणी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वर्णा सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सोजिना जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना गुर का शब्द वसै मन जाकै दुख दर्द प्रमता का भागै सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाकै मन बूठा सो पूर करम्मा नाशिना।

संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा ना ही अवर तड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंगा वह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाय समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे सीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवां अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देण सुनत सब मोहैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन संख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठुला मैं गणत नाया वै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो
ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਾ ਜਗ ਮੌਲੂ।

चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा। एक जी ही गुण कमन बखाने, सैस फनी सेखे अंत न जाने। नव तन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ऊट गही जगत पित सरनाया, तै भयानक जमदूत दुतर है माया। हो कृपाल इच्छा कर राखो, साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भाव है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा बार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेख मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारफत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, पूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले महमौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथे खैरी, पंजवै पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोर हो खाना, गिल दरियाओ तो वो मैं लाना, पीर पछाण पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जाको मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाय कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे उथापे साजी, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटां का मालका, चरण कमल सरन आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारे, जप हर हर भौ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, किसह प्राप्त।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरे।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना, जिस रूप नारेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है तिसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूपते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंदा कापड़ जिवै पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चोही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहु कसुध जे गुण होवन ता फिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निहचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

ਸਹਿਜ ਬਨਸਪਤ ਫੁੱਲ ਫਲ ਭਵਰ ਵਸੈ ਭੈ ਖੰਡ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਹੈ ਏਕੋ ਫੁੱਲ ਬਿਰੰਗ ਪੌੜੀ ਜੋ ਜਨ ਲੂਜਹਿ ਮਨੈ ਸਿਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਪੁਛਾਨਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਇਹੋ ਮਹੱਤ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਹਰ ਜੀਉ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗਤ ਨਹਿ ਜਿਤਾਨਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਗ ਭਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਭੀਖਿਆ ਲਿਉ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦੇਉ ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਮੜੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਲ ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਦੀਆ ਸਭ ਬੱਧੀ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਤ ਦਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸੋ ਦਰ ਸੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਸ ਜੇ ਵੜਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਸਰਣਾਈ ਛੂਟੀਐ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਜਿਸ ਦੈ ਸੱਚ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਸੀ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਸੂਰੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਨੀ ਦੂਜੈ ਪਚ ਜਾਵਹਿ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਜਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਜਿਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਹਿ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇਵ ਗਤੀ ਗਏ ਮਰ ਜਨਮਹਿ ਫਿਰ ਆਵਹਿ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨਾ ਉਜਲਾ ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਪਿਰਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈ ਧਨ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਉਜਲਾ ਸਿਰ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੋਡੈ ਭੈ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਾਰੂ ਮਾਰਨ ਜੋ ਗਏ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਹਿ ਗਵਾਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕਹੋ ਮਨ ਮਾਰਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਉਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਿਵ ਵਾਸਾ ਸਖਤੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਜਨਮ ਬਨਾਸਾ ਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ ਜਪ ਸਾਸ ਗਰਾਸਾ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਸੋਧ ਦੇਖ ਉਤਮ ਹਰ ਦਾਸਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮੇ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੋਆ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ ਨਵ ਖਨ ਮਦੇ ਪੂਜਿਆ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ ਮਤ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਚੌਂਕੈ ਪਿੱਟੈ ਨਾ ਕੋਏ ਝੂਠੇ ਚੌਂਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਟਕ ਨਾ ਸੂਜੈ ਅਫਰਿਓ ਜਗ ਮਹਿ ਵਰਤਦਾ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਲੂਜੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਭੇਦੀਐ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬੂਜੈ ਸੋ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁੱਟੀਐ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਜੈ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੀਜੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲ ਰਾਸ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
अलगो जो ए मधुकड़ो सारंग पान सबाय हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे इन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छामणी सब तुदै लागे सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगणो लाभ ना पूंजी सात महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्मलो तन साहा वापार महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान माथे उभे जम मारसी नानक मेलण नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नव निद नाम एक आपे परम पलायन तिन निफल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन कै मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हिक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद महला पहला मांडल भेद से बाजणु कणो धड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा मज भर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावै जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवै जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे सलोक महला पहला सुनिए एक बखानिए सुर्ग मृत पयाल हुक्म न जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल कौन मुआ कौन मारसी कौन आवे कौन जाए कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाई महला पहला हौ मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ तृष्णा थकी नानका जा मन रत्ता नाए लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीवर सायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे ओ पल्ले हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्ले से साहा सच्चे बन जा रिया जिन हर धन पल्ले हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल्ले सलोक महला तीजा मनमुख वपार सार ना जाननी बिख विहाजह बिख संग्रह बिख स्यो तरह प्यार बाहरो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यो चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसर जाए पौड़ी
हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही। दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाई, बिन कर्मा किछु ना पाईए जे बहुत लुचाही। आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही, आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा, इस जग मह संती धन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलया प्रभे आई, सतगुर सच दृढ़ाया। इस धन की कीमत कही ना जाय, इत धन पाए भुख लथी, सुख वस्या मन आई। जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आई, मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाई। अन्दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय, शांत ना कदे आवई, नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय, नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा, जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै, हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै, जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै। हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना व्या जय कोई, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी, अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ, गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराउ। खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाउ, सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ। अमृत का रस आया मन वसिया नाउ, श्लोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हौ नाही, बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे, सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे। आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए। नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रे भवन तिसै समाहे। महला तीजा, मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार। आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार। पौड़ी, मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते। तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते,
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸ ਕਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੋਏ ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਥੋਕ ਵਸਾਰ ਇੱਕੋ ਮਿਤ ਕਰ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਹੈ ਹਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕੈ ਜਨਮ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੋਗ ਨਾ ਮੋਹੇ ਜਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਂਝ ਧਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਟੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਪੌੜੀ ਭਾਣੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਯੁਨ ਭਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ ਭਾਣੈ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਿਨ ਜਗਤੇ ਉਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵਣਾ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਏਂਦਾ ਤਿਵ ਹੀ ਕੋ ਨੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਚਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੁੜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹੋਂ ਪੱਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਵ ਰਸ ਛਾਰ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤੋ ਥਾਟ ਸਿਰਜ ਸੰਸਾਰਿਆ ਹਰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਨਵਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਜ ਹਰ ਰੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਅੰਤਰ ਕਲ ਧਾਰਿਆ ਹੀਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬੇਦਿਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇ ਛੋੜ ਜੀਓ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ ਕਦ ਪੱਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਰਜਨ ਤੂੰ ਜਲ ਪਹਾੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕੰਤਾ ਤੂੰ ਸੌ ਸਿਜੜੀ
मैं डाहबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा भाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपड़ कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वशाई कंतकु किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरतह आप कुदरत दिखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एहे रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ही साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूश पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवा भोरे भोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया
गाफल जले ओह पाहि जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहि महला पंजवां नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुर अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवां नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साद लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगे सकती हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवां देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवां दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीव सा महला पंजवां कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जने की जे वडहर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवां जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रवियास जिन्ना की मैं आसड़ी

लगदियां नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाए रहो हर वसदा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कपड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हऊ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंग जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्य हो हूं मैं तजो हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चल दिया।

ना चलई खिन जाए बिलामी, बिचरदे फिर संसार में हर जी हो कामी। कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी, जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी। दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब, मरण पछाण दो कोई नानक तिन्ना खाक। जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा, जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो। तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा। मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा, मूह तन प्रेम अथा पसन को सच्चा धनी। पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा, आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा। बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा, अंदरों थोथा कूड़े यार कूड़ी सब खचा। वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चे पातशाह देख तुर कर मचा। जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया, नानक सफल जन्म जय कट बुठा सच तनी। महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी। पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई, ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई। ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई, ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई। ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई, ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई। होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई, पूर्व लिखिया पाया हर सिउं बन आई। दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है, कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है। जिन सच पल्ले हुए महला पंजवा, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा। सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खनिए महला पंजवा। सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा, मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी। पौड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी, बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी। रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी, काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी। पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी, रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी, निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अविनासी। दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल, हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग। मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा, आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस। आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरे ओद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोध। पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी, कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी। सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी,

कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दिसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूनिया महला पंजवा हिक सकू तू आहे पाषाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टले ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखने महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर स्यो रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां पेरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह पुत्र कलत्र स्नेह नानक नाम विहूनिया निमुण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याईंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़िया सगल अपायणु प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्ले नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक दखने महला पंजवा लगड़िया पिरियन पेखंदिया ना तिपिया हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा कथनिया संतहा ते सुखाऊ पंदिया नानक लदनिया तिन्हा जिन्ना भाग मथाड़े महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं कर दयालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपियोन इस सौदे लायक सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालू कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक दखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ै ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अतकालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदिया महला पंजवा जल फल नीर भरे सीतल पवन चलार दे सेजनिया सोएन हीरे लाल जड़ंदिया सुपार कपड़ भोग
नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी। कारण करता जो किया सोई है करना, जे सौ तावह प्राणियां पावह तुर लहना। बिन कर्मा किसु ना लभई जे फिर है सब धरना। गुर मिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना। भय ते बैराग उपजे हर खोजत फिरना। खोजत खोजत सहज उपजिया फिर जन्म ना मरना। हे आए कमाए त्याया पाया साध सरना। बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस पौजल तरना। श्लोक महला पंजवां पहला मरण कबूल।

जिन्ना महबत एक सिंह ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहन ना जाई है सच साहा अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले पन्नन करन समरत है ओपत सब परले करन कारन समरत है घट घट सब बोले रिजक समाहे।

कमावना, किया तुर मौले तुदहो बार किस नहीं, नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडिया कवन कमत तुम लागे, बूढ़ हो गए परवार सकल स्यों, राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा, जी बदहो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, का को कहो कसाई, मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर रामे राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पहाई, बनह बसे क्यों पाई है, जौलो मनहु ना तजह बेकार, जेहे घर बन समसर किया, ते पूरे संसार, सार सुख पाई है रामा, रंग रवहो आत्मे राम रहाओ, जटा पसम लेपन किया, कहां गुफा महबास, मन जीते जग जीतया, जाते बिखिया ते हुए उदास, अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माए बिडान, ज्ञान अंजन जेह पाया, ते लोइन परवान, कह कबीर अब जानिया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटिया, अब मेरा मन कतहु ना जाए, रिद सिद जा को खुरी।

राग मारु बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरै रहाऊ।

दुख सागर सुर तर चिंता मन काम तेन बस जा केरे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाउ नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

अमरस चूसे रैन अंधेरी क्या पत तेरी चोर पड़े घर मूसे राखण हारा अगम अपारा सुन बेनंती मेरी आ नानक मूर्ख कबह ना चेतै क्या सूजै रैन अंधेरिया दूजा पहर भया जाग अचेती राम वखर राख मुइये खाजै खेती राम राखो खेती हर गुरहेती जागत चोर ना लागै जम मग ना जावहो ना दुख पावहो जम का डर पहो भागै राव सस दीपक गुरमत द्वारै मन साचा मुख त्यावे नानक मूर

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारी बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

खोई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपे पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भुलावड़ भुली भुल भुल पछो ताणी फिर छोडियड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस धन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुती हों मैं लगी ताती उडर हंस चलिया फुरमाया असमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज घर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसियड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुन्नी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अनदिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़।

रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभु कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरी है सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहा गुर रूप मरारे गुर रूप मरारे त्रे पवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव चढ़ सुआया अपरंपरे आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता सच राता

साच्य राजा गुरमुख तरिय तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साद लुभाने किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिय जम डर मरिय जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

गुण गाए राम रसाए रसी है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हो वारिया जब देखा पिर प्यारा हर गुण रस रवा राम मेरा अंतर हुए विगास प्रियो प्रियो सच नित चवा राम प्रियो चवा प्यारी शब्द निस्तारी बिन देखे तृप्त ना आवई शब्द श्रृंगार हो।

अन बिन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए।

अनेक जन्म पाप कर परमे हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाए काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगै सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावै आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावै तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावह जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेवया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करतै जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप भौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेवया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरियात ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना।

चेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लय सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करह क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई जगातिया अपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुर उठ गई गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थेहो गुआया कीर्तन प्राण नित पुन हो वह गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों चातरक बुंद।

प्राण हित चिता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर, किन साध संग मन जिता, कहो नानक जियड़ा बलिहारी, जियो पिंड तो दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा, ताकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अवनाशी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख विधाते, उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कह तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निमका, केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन राम नाम नित गावी, अगम अगोचर ना जाई हर लखिया, गुरपुरा मिले लखावी रे रहाओ, जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लावी रे, सब को भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पावी रे, हर हर नाम अमोल का हर पह, हर देवै ता नाम त्यावी रे।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गमन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरि।

अहम बुद्धत जावहु अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाऊ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग ना निबहत।

कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल ससाथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बाछत मिले लिखत धुर माथ किदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब एह प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एह परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी केदारा महला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह धारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरथ नानक।

सगल संपत काल सिर पर जान मितन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक।

होत जीवन रूप बसार जीव है तेहे कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे भार बाहक खोत आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत ताज गोपाल जे आन लागे से

आव पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावै दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर भाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खुले ता मन खीवा पाई अपै

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होए क्या को करे प्राणी जात सुभावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

खान, पाउ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महा सुंदरी, पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाउ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहत लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग केदारा बाणी रवदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

पद है अमरेऊ, राम भगत बसेख रहाउ, स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत, लोक बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास, राग भैरो महला पहला घर पहला चौपदी,

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हों ममता, कठन पीरिया तपारी गुरमुख राम जपो रस रसना। इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी। शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया। बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा। सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस। राम नाम लिव लागी, भैरों महला पहला। पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी। नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरो महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते पाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी। रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधै सिर धंधा। काल बकाल सदा सिर तेरै, बिन नावै गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो धंध कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरो महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै। आप मार

के आदिसु घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहिया सच वेसु साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगे प्यार, रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसै सहज सुपाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखण हार, नानक नाम रखो उर धार। भैरों महला तीजा, कल युग मह राम नाम उर धार, बिन नावै माथै पावै शार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई, रहाउ राम नाम जन पालह सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान, सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरों महला तीजा, कल युग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार, रहाउ तन मन खोज करै मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया त्यों लोए, कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा, कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई, मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हउ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा, सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई, त्रै

मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरै ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवावै है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छे सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिष्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहा। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किड्डू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खवाई। उदर लै सान ना परिये कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया मान जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखान भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए ले गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाओ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थे सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरो महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीवह तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

मन जाप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ। जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस को तुम हर राखिया पावे, तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरों महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होवै जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार। मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ। जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर। जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार। हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार। नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। भैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी। तिनका दर्श देख मन बिगसै, खिन खिन तिनको हौ बलिहारी। हर हिरदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी। हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ। तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया बनवारी। तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी। हर आप बुलावै आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी। भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने। जिन हर नाम सुनिया मन पीना, तिन हम सरेव है नित चरनी। जग जीवन हर त्याए तरनी, अनेक असंख नाम हर तेरे। ना जाई जेवायत गणनी रहाउ, गुरसिक हर बोलो हर गावहु। ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा। सो जन पावे हर सुख कणी, धन सो वंश धन सो पिता। धन सो माता जिन जन जने, जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर। से साची दरगाह हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे। विच भगता हर धरनी, नानक जन पाया मत गुरमत। जप हर हर पार पवनी।

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचराएन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

सुनाया, जैसे दह दिस पवन चुलाया, बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया, त्यों साकत ते को ना ब्रासाया, तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया, पैरों महला पंजवा, जियो प्राण जिन रतियो शरीर, जिन्ह अपाए तिस कौ पीर, गुरु गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद श्याम, रहाउ प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत, मीत हीत धन नह पारना, धन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत हो।

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवां, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मूल।

सच्चे पातशाह नेत हरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन ते आए नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण भैरो महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाई।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरों महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यास पेख्यो जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन मह पेख्यो नट नाटक निरताए चहो मह पेख्यो खट मह पेख्यो दस अस्ती सिमरताए सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आय भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करे बिक संचै नित डरता फिरे है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

पर ग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपौ सुख दाता, तिन पौ दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोए। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाय, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो भावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता।

गया कहां कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हौ त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

पीना, देष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

फिर जोनी परम रोग बंद रहन रती ना पावे, बिन सतगुर रोग कतह ना जावे। पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाहां पकड़ रोग हो काढ लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता। चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे। चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी। भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी। कुटुंब हमारा निज घरवासी, हम सुख पाया।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा बेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदनी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। रहाउ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ, नाम लैत दुख दूर पराना। नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहयो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। पैरू महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

पियावे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

ही आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रेविद माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाऊ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सगल

संत मंडल में है जन्म मरण रहे, संत मंडल में है जम किशु ना कहे, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में है नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल में है पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में है हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाऊ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, इहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरी, बैरी मीत होए सम्मान, सर्ब मह पूर्ण भगवान।

बहुतै धन खाते, सुख नाही पेखे निरत नाते, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संग पाइए वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ, बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावे निज कर बसै, सब जाचक प्रव देवन हार, गुण निदान बेअंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा, गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

सुख वसह माने आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाव पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर

नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अविनाशी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर।

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सोतनवंता जिस बुद्ध विवेक सोकलवंता जी सिमरै स्वामी सोपतवंता जी आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवां, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

आपे घट घट जाल है भेद ज्योत स्वरूप जाति सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ।

जन धन भैरू महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राख हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोई, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायन, किसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सारे।

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावह तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

कुदरत नहीं जानै, लीपै थाए ना सोच हर मानै, अंतर मैला बाहर नित धोवै, साची दरगह अपनी पत खोवै, माया कारण करै उपाऊ, कबहै

नहीं पंग पैरो महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे निंदक को

सतगुरु अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका

ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी भैरो अष्टपदिया महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काट हो मारा नानक हो मैं रोग बुरे जह देखा तह का बेदन आपे बख्शै शब्द तुरे रहाओ आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका बेद कतेव करह कह बपरी नह बूझ एक एका मिठरा सखाए सो रोग परी जय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरू महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हों कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाती पांदे कह आया नाम बिना नह पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए परवित ना पढ़ो रही समझाए।

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडे मरके की पुकार, सबे दैत रहे चाख मार, भगत जना की पत राखे सोई, कीते कह कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझे तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझे काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान बिरडाया, राजमाल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़े आई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती नाराई हम मूड मुगद किस बूझ नाही तू आपे देहे बुझाई जो तुद पावे सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए तुद

सूझै, दुर्मत अज्ञान अंधारा, भवजन पार न पावह कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मलाई, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे निवलाए, तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे, राम नाम उर तारे, भैरो महला पंजवा अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए, इस सलाही जिस हर तन रास, सो वड भागी जिस

तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साह, नाम हीन नाही पत वे साह। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत मलाया। तैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार। कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

की सह जाए कोट अपार जना तेरे अंग कोट भगत बस्त हर संग कोट छत्रपत करत नमस्कार कोट

नाम चार कोट पूजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया काटे अंतर जामी।

तीरत हर साची बहुर बहुर तिस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचै नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हमको गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ काट काट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जीओ घर पहला, एक ओंकार सतगुर।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खलौना जाना, जौ हो बौरा तौ राम तोरा, लोग मर्म कह जाने मोरा, रहाउ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन

पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाउ। जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दो

सो देही पज हर की सेव, पजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज नेहरे मन सारिंग पानी, अब ना भजस भजस कब पाई।

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वारे सूरज तपै मेर डंड सिर ऊपर बसै पश्चिम द्वारे।

भीतर आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई। महला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरता हो सेव जो पाथर की पाई पाई तिसकी काल अजाई जाई ठाकुर हमरा।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर कौ व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

राती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मिट जाई, तब प्रभ काज सुआ रह आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

बंका पाई दोवर कोट अरतेवर खाई रहाऊ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी पर बल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रघुराया काम कवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड दुंदर तह मन मावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तिसना तीर रहे काट पीतर यों गाड़ लियो ना जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दुए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरियो गढ़ को राजा भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनासी गंगा गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बां

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया स्थान तीन त्रया खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादस दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमलाकंत अर्ध उर्ध

फिर है बासक कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट जाके पानी हार रमावल कोट अथार है पार कोट कमेर पर है पंडार कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार कोटक पाप पुन बहो हिरह इंदर कोट जाके सेवा करह छप्पन कोट जाके प्रतिहार नगरी नगरी खेत अपार लाट छूटी वरते बिकराल कोट कला खेले गोपाल कोट जग जाके दरबार गंधर्व कोट करह जयकार विद्या कोट।

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पति आए नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे तरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

भगत जना को देहरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसे

सब राजे बिनती करे पटराणी, भूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो अवरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी, गिर तर जल ज्वाला पह राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै को पियो, मोहे बताओ जो तुहे राख है, पीत पितांबर त्रे पवन धनी, थंब माहे हर पाख है, हर नाखश जिन नखह बिदारे हो, सुर नर किए सनाथा, कह नाम देहु हम नर हर त्याव है, राम अपै पद।

आई नातर गर्दन मारो ठाई बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवे कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण

वैकुंठ तरै, जो गुर देव ता जीवत मरै। सत सत सत सत सत गुर देव, झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाव। जो गुर देव ता नाम दिरडावै, जो गुर देव ना दह दिस तावै। जो गुर देव पंच ते दूर, जो गुर देव ना मरगो झूर।

अरल फूली बन राय, फल लागा तब फूल बलाय। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मतह सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, तारे अबदाली पेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर कोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट का

नाथ काजी मुल्ला हो वह सेख जोगी जंगम भगवे पेख को गिरही कर्मा की संद बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सिरकार करनी ऊपर हो वग सार हुक्म कर है मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत पंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ, सिमरत शास्त्र करह वख्यान, नादी बेदी पढ़े पुराण, पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे, तिन कैर मैया नेड़ नाई, जे को ऐसा संजमी होए, क्रिया वसेख पूजा करे, अंतर लोग मन बिख्या माहे, वे निरंजन कैसे पाहे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जा को तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दूर

अपरंपरे अगमय गोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठै पाइय हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावह बिरले के बसंत महला तीजा इक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उदर है।

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलहरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईए नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईए कर्म मिले हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखे प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिले बड़े आई गुरमुख से प्रदान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब

गुर प्रसादी जीवत मरे, अन दिन साच नाम उचरे, इन विद प्राणी दुत्तर तरे, देखे अमृत करतार पाई, संसार बिरख को दोए पल लाई, आपे करता करे कराई, जो तिस पावै तिसै खुआई, नानक जिसनो नदर करे, अमृत नाम आपे दे, विख्या की बासना मनह करे, अपना पाणा आप करे, बसंत महला तीजा, राते साच हर नाम निहाला, दया करो प्रभ दीन दयाला, तिस बिन अवर नहीं मैं कोई,

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौमै रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर किरपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक और हर अमृत धारी बसंत।

पाए, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचै प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे सतगुर दिया बुझाए, दासा का दास विरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए, रहाओ एको सेवो हो अवर ना कोई, जित सेवे सदा सुख होए, ना हो मरे नया वै जाई।

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै ता शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मनमुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन सवारे गुरु कै शब्द साच उर धारे रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन निर्मल सद

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

तुम साच त्यावो मुग्द मना ता सुख पावो मेरे मना रहाऊ इत मन मौल्य है भया आनंद अमृत फल पा।

छडाई नानक माया मोह शब्द जलाई। बसंत महला तीजा बसंत चढ़या फूली बनराई। ए जी जंत फूल है हर चित लाए इन बिद इहो मन हरिया होए। हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हों मैं कड़ै तोए रहाउ। सतगुर बाणी शब्द सुनाई इहो जग हरिया सतगुर पाए। फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगै तां सतगुर पाए। आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली। बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर की बाणी बिटोह वारिया पाई गुर शब्द बिटोह बल जाई। गुर सलाही सदा अपना पाई।

रहाउ। गुर राखे से उबरे पाई, हर रस अमृत पियाई। विचों हो मैं दुख उठ गया पाई, सुख बुठा मन आई। तुरे आपे जिन्ना नु बख्शियो नु पाई।

करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोए। नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मलावा होए। राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। एको हर रविया सर्ब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए। रहाउ घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर। एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख भंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे। रहाउ मनमुख फिर हो मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे। भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी। सतगुर मिले तां खोजिया, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मलाई, देखत दर्स पाप सब नासह। पवित्र परम पद पाए रहाउ, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। धन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम उपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया। अज्ञान अंधेर गवाया, जगन्नाथ जगदीश गुसाई। कर कृपा साध मलावे, नानक शांत होए मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमन से। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनसे। गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृपसे। जन्म जन्म के किल विक मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे। रहाउ तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। से तन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धार्यो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डै भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे। रहाउ जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म के हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनी दे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा,
मन खिन खिन परम परम बहुत आवे तिल घर नहीं वासा पाई है। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाई है। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याई है। हों मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाई है। रहाओ कर रतन लाल बहुमान कलादी मन भ्रमिया लह ना सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़े त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाई है। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है। जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया।

पानी हर उस्तत धार हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लानी हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विट हो घुम वानी जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लानी जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भानी।

मुग्ध सुंदर धार जोत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत निहाल, मेरे प्रीतम कारण करन जोग, हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ, नाम जपत होवत उधार, नाम जपत सुख सहज सार, नाम जपत पत सोभा होई, नाम जपत बिघन नाही कोई, जा कारण एह दलभ दे,

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के भगत को नाही पै जा के भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखद।

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाउ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

एक फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा।

पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप ना सूझे परम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवे एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझे नानक तरिये गुर बचनी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मितया जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारे कछु ना चाले ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोभ मोह एह परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मनते निज सुख माहि समाया जा को होत दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावे कहो नानक एह बिद की संपै को गुरमुख पावे बसंत महला नौवां मन कहां बसारियो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाउ इहो जग तुएं का पहार तै साचा मानिया केहे विचार तन दारा संपत गृह कश संग ना चालै समझ ले एक भगत नारायण होए संग कहो ना।

गया तीता, हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दी या सच अमृत।

धर्म चकाया बेमोहताज बेअंत अपारा सच भतीजै करण हारा नानक भूले गुर समझावै एक दिखावै साच टिकावै बसंत महला पहला आपे पवरा फूल।

आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चौं हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी।

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखायाई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

हमारी चारे कुंट सलाम करहेंगी घर घर सिफत तुम्हारी तीरथ सिमरत पुन दान किश लाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत घर आण सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करह बखीली एक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावे गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट तार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोय। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत सात शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तो नह संगाई बिक का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वास किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याई कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई एह रुत सुहाई वण त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रह कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगमे अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म परगास राजा राम मौलिया अंत पाए जह देखो तह रहया समाए रहाओ दुतिया मौले चार बेद सिमरत मौली स्यों कतेब संकर मौल्यो जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोग त्यान सन्यासी माते अहमेव तपसी माते तप कै पेव सब मद माते को न जाग संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतम कलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पेंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पर्ण साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडे मर कै कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहारु मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै बिस्थार हरनाक्ष छेदे।

पांच, वरद पची सक संग काच, नौ बहिया दस गोने आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज, रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अभागे।

अगन के लूठे, अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी परोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

तेरा चेतना चले मन भयो पांग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

तो जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगत ना छोडो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरे हियर बसै रहाओ। जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांडै, तैसे संत जना राम नाम ना छाडै। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाड।

तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, उत्तर कलत्र का करह अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसह पकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कहरव दास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल, इस कर्म है।

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पैराहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिलक रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारी। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी। जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मोह पसारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए हिल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए तूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद लागा मोह पूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग तूर। नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी। रहाउ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हृदय।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कह शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उबहारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति ज्योत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सारंग महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी।

बिन सत संग सुख किने ना पाया, जाए पूछो बेद बिचार। राणा राव सबै को चल है, झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा, कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो। तिन स्यो झगरत पाप रहाओ, जिस धन का तुम गर्व करत हो। सो धन किसह न आप, खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस। तौ लागे पछताप, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी। हर तिन के जापो जाप, अपदेश करत नानक जन तुमको। जो सुनो तौ जाए संताप। सार महला चौथा, कर पंजवा, दो पदे पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक, सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक। तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत, तू हर स्वामी। तू आपे ही जान है अपनी पांत। हर कै निकट निकट, हर निकट ही बसते। ते हर के जन साधु हर पगात, ते हर के जन

हर सियों मिले हर भगत तूरा, सारंग महला चौथा। जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी। सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ। हर कट कटे कट बसता, हर जल थले हर बसता, हर थान

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे, तिस जन के हो मल मल तू आ पाऊं। हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अनदिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाउ। हर दर्शन को कोट कोट तेतीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाऊ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ। सार महला पंजवां हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान करह सोम पाक हिरह पर दर्भ।

प्रभु पलाए पूजड़ पाए निफल सब करमान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अम्बे अम्ब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहा आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटी है जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै न लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे।

सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरु देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खागियो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारी महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरा कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहयो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ ना

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठंड हो खाए खाए मुस्कार गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके गुवार कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सार महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वडभागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज

जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही। सारंग महला पंजवां क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ। जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई। करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई। जेहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ताकै हो जाई। सारंग महला पंजवा वाह अवसर कै हो बल जाई। आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ। भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई। ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संतरे नाई। संत प्रताप भरम सब नासी नानक मिले गुसाई। सारंग महला पंजवां मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै। आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास। जन्म जन्म के किल विख नास है आगे दरगाह हुए खलास। शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास। कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास। सारंग महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कहां लभाइए।

यह अधाम नपान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हर नेकी ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो हुए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक बिन नाही को दूजा आन ना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाउ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप में ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांछै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान भूल लो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसर स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो करे अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठियो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सार महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देस प्रिय रोम ना समसर लागै रहाउ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुर नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग न संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पय मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पय लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ। राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमुख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ। करह अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ये पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला।

तेते दुख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्ब प्रतपाल मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहुं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट।

तब पूरन होई आसा सार महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदा पनीत हृदय हर बस्यो मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुरु पूरा भेट्यो सुख सहजे आनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

असा कत कत हर हर दीठा रहाउ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्व थान घट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा तोह नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभ हियर बसेओ सगल

चतुर अनूप बधाते किस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सारंग महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई व्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आसना अवर काहू की कीजै सुखदाता प्रभ त्याईए।

मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता भरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाओ देव सचार के दिसह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाव खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संतो हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला।

ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइय वडभागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारू महला पंजवा, करहो गत दयाल संतो मोरी। तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जन आयो। सर्व सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जा को छायो।

समाये आनंद आनंद गुण गाया बाहां पकर कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया कहो नानक गुरबंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाउ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चर हो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सुआओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यों लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाउ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास पेख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाउ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाइय कर लै आवलाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जात वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

कहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अरत हो छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरी देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पानी। सारी महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ो हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोभा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया एहो परता।

सर्व प्रतपालक सर्व कटां आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवां, आवे राम सरन बड़ भागी, एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर, साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाउ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेहो तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद विसार सगले, भलो नाम सुआउ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय, एक स्यों लिवलाओ। साध संगत होहे निर्मल, बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ। सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ। मुक्त पदार्थ साधु संगत, अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, माया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचारियो, भगत श्रेष्ठ पूरी। कहो नानक एक राम नाम बिन, अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है। चरण कमल बलिहारा रहाव, सत परमेश्वर सत साध जन, निश्चल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए, सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ता को, जां का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बने आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जां को कृपा करहु प्रभ मेरे, सो हर का जस गावे। आठ पैर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनी है हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन। फोर परम की रेखा रहाव, कहत सुनत किश शांत ना उपजत। बिन बसास क्या सेखा, प्रभु त्याग आन जो चाहत। तां कै मुख लागे का लेखा, जां कै रास सर्व सुख स्वामी। आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम, कलमल दग्ध होहे खिन्यंतर। कोट दान इशनान रहाव, आन जंजार वृथा श्रम कालत। बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे। जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूर्ण सुख सागर। कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे, बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागे,
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना। साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर। राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना। मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाला। राम नाम रस खीवन।

आतिस सोए उद्म करूं दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुम।

तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप, आद बेआद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, साधु कै संग खाप, भगत वचल भय काटन हारे, नानक के माई बाप, सारंग महला पंजवां, आतुर नाम बिन संसार, त्रिपत न होवत कुकरी आसा, इत लागो बिखिया चार रहाओ, पाए ठगौरी आप पलायो, जन्मत बारो बार, हर का सिमरन निमख ना सिमरियो, जम कंकर करत खुआर, हो कृपाल दीन दुख पंजन, तेरिया संत है कीरा वार, नानक दास दर्श प्रभ जाचे, मन तन को आधार, सारंग महला पंजवां, मैला हर के नाम बिन जियो, तिन प्रभ साचे आप पुलाया, बिखै ठगौरी पियो रहाओ, कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति, हित नहीं कतहु पाई, पूरा सतगुर सहज न भेटिया, साकत आवै जाई, राख ले हो प्रभ समृत दाते, तुम प्रभ अगम अपार, नानक दास तेरी सरनाई, पव जल उतरियो पार, सारंग महला पंजवां, रमण कौ राम के गुण बाद, साध संग त्याई परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद रहाओ, सिमरत एक अचुत अबनासी, बिनसे माया माद, सहज आनंद अनहद तुन बाणी, बहुर न पये बिखाद, सनकादिक ब्रह्मादिक गावत, गावत सुख प्रहलाद, पीवत अमेओ मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद, सारंग महला पंजवां, कीने पाप के बहु कोट, दिन सरैणी थकत नाही, कतह नाही छोट रहाव, महा बज्जर बिख ब्यादि, सिर उठाई पोट, उगर घन्या खिनह पीतर, जमह ग्रासे चोट, पशु परेत उष्ट गर्धव, अनक जोनी लेट, भज साध संग गोविंद नानक, कछ ना लागै फेट, सारंग महला पंजवां, अंधे खावह बिसु के गताक, नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनाथ रिजान उदर लै पुख है, माया गईया हाट, किल बिख करत करत पछतावह, कभू ना साक है शांत, निंदक जमदूती आए संघारेओ, देवह मूड ऊपर मटाक, नानक आपन कटारी आपस को लाई, माने अपना की नो फाक, सारंग महला पंजवां, टूटी निंदक की अद बीच, जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ, उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे, इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे, प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी, कीता अपना पाया, नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया, सारंग महला पंजवां, तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कतहु बात है, अंत प्रतिहार रहाओ, सांत सूख ना सहज उपजे, यह इस व्यवहार, आप पर का कछ

तलवार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीत्यो।

मन मोहयो अचर्जता के स्वाद रहाओ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो द्वितीया भाव सब लूह रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काढ़ी नरक ते तूह। संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिन से हम मैं हूह। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूह। सारंग महला पंजवा बिन से काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहु नाम हृदय तार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण। तिनके दोख जरे सफल दे तन ओए जन्मे। प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध। सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांछे। उदरह लाग पल्ले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख है कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर द्वितीया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहाव। कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी। संता बिनत कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी द्वितीया आस। महाध्यान अटवी ते काढे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो। सारंग महला पंजवा माई री अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहाव। प्राण मान पत पित सुत बंदप हर सर्बस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर। नानक शरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर। सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन कलमला काढत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
नानका सच जोए। सारंग महला पंजवां, हर के नाम की मत सार, हर बसार जो आन राच है, मिथन सब विस्थार रहाव। साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार, चरनार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कर अनग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रैन सिमरत सदा नानक, मुख उज्जल दरबार। सारंग महला पंजवां, मानी तू राम कै दर मानी, साध संग मिल हर गुण गाय, बिनसी सब अवमानी रहाव। तार अनुग्रह अपनी कर लीनी, गुरमुख पूर ज्ञानी, सर्ब सुख आनंद कनेरे, ठाकुर दर्श त्यानी, निकट वर्तन सा सदा सुहागन, दह दिस साई जानी। प्रिय रंग रंग रती नारायण, नानक तिस कुर्बानी। सारंग महला पंजवां, त्वा चरण आसरो ईस, तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप।

दृष्टा जो साध संग पग रौ रहाउ दृष्टौ कस संग न जाय मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निदान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिकम गार तोरी सारंग महला पंजवा मन बेरा गैगी खोजती दरसार रहाओ साधु संतन सेवकै प्रियो ही अरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हौ महल पावोंगी काम करी सब त्याग कै हौ शरण परूंगी नानक स्वामी घर मिले हौ गुर मनाऊंगी सारी महला पंजवा ऐसी होए परी जान ते दयार रहाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाहे बिचायो जात जन्म कुल खोई हौ गावो हर हरी लोग कटंब ते टूटी है प्रभ किरत किरत करी गुरमुखो उपदेसिया नानक सेव एक हरी सारंग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीट हस्त पाखान जंत सर्व मैं प्रतपाल तू रहाओ नह दूर पूर हजूर संगे।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपताही या यग मह को रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू न हर गुण गायो दिखिया सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाऊ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा धुन निश्चल घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पई मन पहाई। सहज समाद सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

हर रस रत्ते अदखाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथ

जो तेरे मन पानी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांति आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाई जिन विचों आप गुआया साचै शब्द सहज धुन उपजै मन साचै लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाणै शब्द मरै ता सब किश सूजै अन दिन एको जाने जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिव लाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर ले जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कह शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह पाए दूजै बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजै परम पथ खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो होए सखाई सच्चा सच दाता कर्म विधाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझै

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावे आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावे जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावे लिखै सारंग महला पंजवां।

करन करावन अपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतोहो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसल।

अनुदिनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बढ़ाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पए किरपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन सीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना दिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देऊ कमन बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसै संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जियो कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा
देख चेत नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा, कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जेह चरण बसाया, चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुआया, भया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया, दुख नाठा सुख घर मह बूठा, महा आनंद सह जाया, कहो नानक मैं पूरा पाया, कर कृपा अपने पह आया, सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला दूजा, गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै, अवरना कुंजी हाथ, महला पहला, ना पी जय रागी ना दी वेद, ना पी जय सुरती ज्ञानी जो, ना पी जय सोगी की तैरोज, ना पी जय रूपी माली रंग, ना पी जय तीत पवे नंग, ना पी जय दाती की तै पुन, ना पी जय बाहर बैठिया सुन, ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर, ना पी जय केते होए तूड़, लेखा लिखिया मन कै पाए, नानक पी जय साचै नाए, महला पहला, नव शे खटका करे विचार, निस दिन उचरे पार अठार, तिन पी अंत न पाया तोहे, नाम बिहून मुक्त क्यों होए, नाब वस्त ब्रह्म अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना, जिने आप उपाया, आपे खेल रचायोन, सब जगत सबाया, त्रै गुण आप सिरजियन, माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया, नानक सच वरतदा सब सच समाया, स्लोक

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिना को बख्शीए से पोते दार कुंजी जिन को दितिया इना मिले पंडार।

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशां ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति नाउ पाईए नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारिए ही दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु भरिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भै विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्ने दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्ने हौमै गई सब रोग गवाया नाए मन्ने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाए मन्ने शांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर शरीक होवै कोई तेरा तिस अगे तुदे आखा तुद अगे तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

अल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याएं दे तिन टोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुत पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम सुमाया। श्लोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोए न साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ है गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलाहु, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोग बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजिक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस मानक पया घर घर वेचन जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्लै पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावों लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लहै नौ नित पल्लै पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिन की बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्हां दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै विकसै मोहि माया। देश परदेश धन चुराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुरपूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम सुमाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगै प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसह हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह उठा शहबर लाए, सब धरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए, हर तसै त्याव संत जनहु, जो अंते लए छदाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुरपूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सू

फेरी। नानक आप कराए करता, जोत पावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुरपूरै मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर।

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हस्त।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

चार गऊ बास कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे अत संचय समझे नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम देव ताची आन निरपै होए।

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छुड़ावे।

निफल पई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, सारंग महला पंजवां सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भिखय, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछुऐ, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

उस्ताद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागू सब पन का रहाऊ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कबीर।

गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, धन सुहागण सच सही, मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं त्रिपते, हम मैं करत गुआया, पर धन पर नारी रत निंदा, दिख खाई दुख पाया, शब्द चीन भय कपट ना छूटे, मन मुख माया माया, अजगर भार लदे अत भारी, मर जन्मे जन्म गवाया, मन भावै शब्द सुहाया, प्रम प्रम जोन भेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाउ, तीरथ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्यागया, जात को तत ही आया, बिस्टा कीट पय उत ही ते, उत ही माहे समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई, बिन गुर सहज ना पाया, सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बीचारा, खोजी उपजै बादी बिनसै, हौ बल बल गुर करतारा, हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवार नहारा।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

ठहरै सोय। मलार महला पहला दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग ल

तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंस दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

सब शाम रात परम दै दिसह थाम देहे ना नाऊ ना हुए जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निधान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला

असमान साहिब समर्थ तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर जिन तन साज दिए नाल खंब हाथ त्रिश्ना उडना की डंज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंब पौने पानी अग्नि कासन बंद नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पलाय कर कर करता आपे वेख जित भावै तित लाए सेवक को एहा

थाने ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख।

बुद्ध बदा तैसा एहो संसारा जिस ते होआ तिसै समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाव त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हों मैं कर्म कमाए साहिब भावे सोथी है पय किरत फराए सतगुर भेटे मन मर रह हर नाम वसे मन आए तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाए मेरा हर प्रभ अगमे अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अन दिन नाम लए मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख मिले।

साधु परम पद पाया वड्डी वड्याई होई आन दिन गुण गावे नित साचे सच सुमावे सोई मन रे गुरमुख हृदय विचार तज कूड़ कटंब हउ मैं बिख तृष्णा चलन हृदय संभाल रहाउ सतगुरु दाता राम नाम का होर दाता कोई नाही जी दान दे त्रिपतासे सच्चे नाम समाही अन दिन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुख दाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

गुर का शब्द महारस मीठा हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाउ माया मोह अज्ञान गुवार मन मुख मोहे मुग्ध गुवार अन दिन धंधा करत विहाय मर मर जम्मह मिले सजाय गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़ै लालच ना लपटाई जो किछ होवै सहज सुभाय हर रस पीवै रसन रसाई।

तीर्थयाट साठ मज्जन नहाई सत संगत की धूर परी उड नेतनी सब दुरमत मैल गवाई रहाउ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ मिला।

हर जन को हर दीन वडाई, हर जन हर कारे लावे, सतगुर हर हर नाम जरडावे, हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावे रहाऊ, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावे, हर की सेवा सतगुर पूजो हो, कर कृपा आप तरावे, परम भूले अज्ञानी अंधले, भ्रम भ्रम फूल तरावे, निर्जियो पूज है मड़ा सरेव है, सब बिरथी काल गवावे, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है, हर हर कथा सुनावे, तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर, बहु विध सतकर मुख संचो हो, तिस पुन की फिर टोट न आवे, सतगुर देव प्रतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावे, नानक भाग भले

अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावह सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पशु।

ये बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

तीर आधार बारिक जब होता बिन तीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहा चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राख आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निधान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्द खल खरते, कागर नाव लंग है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

हम एक खेन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहा, उनके संग मोहे प्रभ चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राखियो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम सिंह बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठन भय सा

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु तहाया। मन तन नाम निरंजन रातहु, चरण कमल लेव लाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ। जिनको प्यास तुम

सब रहे हो सब अंतर सर्व रहे आपर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जपै।

अंतर्जामी सब मह वर्तै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन

पंजवा प्रभु को भगत बचल बिरदायो निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरतायो रहाओ जय जय कार कीनो सब जग मह दया जीयन मह पायो कंठ लाए अपनो दास राखियो ताती वाव न लायो अंगीकार कियो मेरे स्वामी प्रम पौ मेट सखायो महानंद करहु दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मलार महला पंजवा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार गुरमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाईऐ गुर उपदेश हर हृदय वस्यु सास ग्रास अपना खसम त्याईऐ रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाउ गुर के गुण अन दिन नित गाउ गुर की धूड़ करो इशनान साची दरगाह पाईऐ मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जां कौ कर्म लिखिया तुर आए गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रब आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सलाही, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए।

अगुआई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोलै मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की सोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कनै।

मान अपाव सगर किए, नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनक ललत गुनगह अनक भांत, बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर, घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जा कै भावनी नीकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे, चरण कमल रिद अंतर धारे। रहाउ दर्श सफल्यो दर्स पेख्यो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारे। बिस्म बिस्म बिस्म भई, अग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारी, जन नानक सरण द्वारी। मलार महला पंजवा, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग। रहाउ संत संगे मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग। कन घोर प्रीत मोर,

गुण गावत सुख चैन रहाउ। हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन।

अंजन कागद कोट एहो जग है बपरू रंगन चेहन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर मार।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकियै साचै तान, नाम संभालस रूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण, पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मगना चालनहार, जित कर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै, करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै, एक मूर्ख अंधे मुगद गुआर, एक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार।

अचार कर विवेक बुद्ध पाई पुरख है पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चल मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई है करमी पल्ले पाई सतगुर विण किन ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे मुक्त।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर सिउ लागा प्यार। हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल परगास तित काट नामे नाम निवास हूं मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाई से भगत सतगुर मन पाई अन दिन नाम रहे लिवलाय सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला तीजा गुर मिले है मन रहसी है, जो उठे परम शिंगार सब दिसे हरियावली, सर भरे सुभर ताल अंदर रचे सच रंग, ज्यो मंजीठे लाल कमल विकसे सच मन, गुर कै शब्द निहाल मनमुख दूजी तरफ है, वेखो नदर निहाल थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जमकाल, खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतो।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सबाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की पकड़।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा।

सिफत भंडार उथे हाथ ना अपड़ कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा। कलमल होई।

अन तन उपजै बहु घणा कीमत कहण ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संबाहे। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाए। दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलिया जाए। आपे जोड़ बछोड़िया आपे कुदरत दे दिखाए। मोह सोग वजोग है पूर्व लिखिया कमाए। हों बलिहारी तिन को जो हर चरनी रहे लिवलाए। ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बनत बनाए। से सुखिये सदा सोहने जिन विचो आप गवाए। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाए। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोए। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो वई।

नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया।

त्रै गुण सर्ब जंजाल है, नाम ना धरे प्यार, गुण छोड़े औगण कमाम दे, दरगाह होए खुआर, जुए जन्म तिन्नी हारिया, कित आए संसार, सच्चा शब्द मन मारिया, अहनस नाम प्यार, जिन्नी पुरखी उर तारिया, सच्चा अलख अपार, तू गुणदाता निदान है, असी अवगण यार, जिस बख्शे सो पाए सी, गुर शब्दी विचार, श्लोक महला पंजवां।

सच समाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजई एक गाव है राग परिया राग ना पीजई एक नच नच पूरे ताल भगत ना कीजई एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजई तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजई कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पीजई हर भगती असनेह गुरमुख कीजई सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभाली है सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

ताही गया पछताए। अंधा किसनो भूख सुनावे, खसमे मूल ना पावे। अक सियो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाई। खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाई खुदाई। नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जा

तीर्थ का नाऊ चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया।

बिन भरम ना कटिए नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे पाइए मूख द्वार पै ते सहज पाइए मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पैजल लंघिए गुरमति विचार पै ते निरपो पाइए जिस

फक्कड़ पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला।

अन पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार इन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

लाए, कथ कथा बीचारी है मनसा मन है समाए, उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए, अजप्पा जाप ना विसरे आद जुगाद समाए, सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज घर वास, शब्द खोज इहो घर लहै नानक ताका दास, महला पहला

आप खाम पूजे हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़े सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे बख्श मला।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम त्याई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगै, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपालराय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पा

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कार कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकटवर्ती

जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है अजहो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तने रवदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते साध संगत पाई।

हम अचेत अचेत न जानह गत मित गुर किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम कट देवो हियरा तेन हर के संत मिले हर मिलया हम की

जप मन राम नाम परगास, हर के संत मिल प्रीत लगानी, विचे ग्रह उदास रहाओ, हम हर हृदय जपियो नाम नर हर, प्रभु कृपा करी कृपास, अन दिन अंत भया मन बिगसिया, उदम भय मिलन की आस, हम हर स्वामी प्रीत लगाई, जितने सास लिए हम ग्रास, किल बिख दहन भय खिन अंतर, टूट गए माया के फास, क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है, मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास, अवगने आरे पाथर पहारे, सत संगत मिल तरे तरास, जेती सृष्ट करी जगदीशर, ते सब ऊच हम नीच बिख्यास, हमरे अवगुण संग गुर मेटे, जन नानक मेल लिए प्रभ पास, कानड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ, नाना रूप रंग हर केरे, घट घट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिख्या के ताक, संत जना की बहुत बहु शोभा, जिन उर तारियो हर रस कर साक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक, तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक, तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर पाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा, मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाऊ, मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया,

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरे कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नान

फिर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

मुत्याहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहा जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आन दो

चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ है आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रबला दो तुर हो लिखे लला दो रहाओ दिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति।

आप तरह फूल सगल तरादू कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निध दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै कोट पराधी खिन महतारै जां को चीत आवै गुर अपना तां को दुख नहीं तिल सुपना जां को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोबिंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन न बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भई।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

जल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाय शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख

आदि कथिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइय मान रहाउ आवत जात रही श्रम नासी सिमरत साधु संग पतत पनीत हो हे खिन भीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ता की दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस कानड़ा महला पंजवा साध संगत निद हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संतरेन नित मजन करे जन्म जन्म के किल बिखरै।

प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाय रहाउ। ईत ऊत कहाँ लुभाव है एक स्यो मन लाय। महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरण आयु

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी पोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान तरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

समानु मुख बकनु मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं छोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाउ अनक पूजा में बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोय ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नवनिध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दर्शेरा।

टुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरस।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चो

से करूं, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी,

पतत पावन भगत बच्चल पै हरन तारन तरन रहाउ नैन तिपते दर्श पीख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूर्ण दुख बन।

आई पतत पावन बिरद स्वामी उदरत ही हर त्याई रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सियो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो।

मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो हो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद पई मिलो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण नदान प्रगट्यो एह चोलै चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाउ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद शासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन सेओ दुख कोर कानड़ा।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तैं अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चुआवै गु, राम नाम एक तिल तिल गावै।

माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर भेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हमै मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यों लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभिमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूजै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर

दुख पावे गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावे गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावे गो हर हर कृपा करो जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावे गो नानक गुरु गुरु।

तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाव चल तो चल चल दह दह दिस गुर राख हर लिव लावै गु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआवै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

लागो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावैगो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावैगो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुधा सुधा कर त्यावैगो। दयाल दीन भए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावैगो। सतगुर सरन पए से थापे, तिन राखन को प्रभ आवैगो। जे को सर समदै जन ऊपर, फिर उल्टो तिसै लगावैगो। हर हर हर हर हर सर सेवह, तिन दरगाह मान दवावैगो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह, हर गल मेल मेल मलावैगो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर परचै नाम त्यावैगो। हर हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावैगो। साकत नर सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावैगो। लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावैगो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावैगो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख।

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांचह, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाले, जप तप संयम पूरन काले, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सबाया, गोविंद गाइय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पाले, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आई। बेकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा, मूसे की वार की धुनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, राम नाम निदान हर गुरु।

आप वर्तदा तू आपे करह सो हो गया। सत संगत सत गुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलो गया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोह गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोई। हम मैं ममता नास होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अन दिन गुण उच्चरे जिनको धुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए। हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवर ना कोई। जो हर प्रभ भावे सो थी है जो हर प्रभ करे सो होए। कीमत किने ना पाईया बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू घट घट हर रंग रंगना। सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचह सब मंग मंगना।

सब फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावे मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार गुर टुठे हर केताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार बड़ भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावने नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन

मारा, हर खेल किया हरे आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्याव है तुद सफल से गाव है, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। सलोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु माते उत्तमा, गुर सत गुर कै पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभु,

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में यागो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाय।

हर गुण क्षमता महला चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै लिखत सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुतियां हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है जिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सतगुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिय सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम राव रहे राम राम राम रमीत घट घट आत्म

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम कूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघा।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ़ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जप हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदैनो अराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण अराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार हुए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर। सब पवो हो शरण सतगुरु की, बिन सह दुख।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार।

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरों दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहा पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकै है प्रभ तुमन्थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी,

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

कल्याण भोपाली महला चौथा एका ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निर्भउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साध लव तन मन।

न सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाव। एते उत दह दिस रवयु मेर तिन है समान। जात कता तत पेखी है हर पुरख पा।

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान। सर्ब कटां के दाते स्वामी, देहे सो पहरन खान। सुरत मत चतराई।

जपन संग जम काल तिस ना खामनो मुकत जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लामनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक गटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लारकीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

दे। राग प्रभाती बेपास महला पहला, चौपदे कर पहला। नाए तेरे तरना नाए पत पूज, नाओ तेरा गहना मत मकसूद। नाए तेरा नाओ मन्ने सब कोए, विण नावै पत कबो ना होए।

या नाम दारू अवर ना सत करन हार अपार रहाव पताल पुरिया एक पार हो वह लाख करोड़।

खुवार। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कही है तरिय साचा होई

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए। गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निव रही है। गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख सेव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिसकै बल जाई, पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजाई, बोलो सच नाम कर।

ता को समझावण जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभातै शब्द त्याईए छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राखे।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक।

देख संभाले सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने, मैं लो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उचा होए, मनमुख खूल महा बिख खाई।

चर अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावे चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहाउ ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संतां की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है कीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार ने केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त परे जल निर्मल

तम हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ साक।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

त्याग नाम हर जीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुईये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिख सब नास्ते सच नाम गुर दीनी रास्ते।

जो तिस पावै सो पल होस, तिस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाई है वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महला।

गुरपूरा पाइए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

साध संग हुआ परगास, चरण कमल मन माही निवास, जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसह नवाजे

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास।

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै एकै प्रीत रहाउ नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम साध संगत हर मिलै।

मज्जन नानक पावे सुख अनेक प्रभाती अष्टपदियां महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने शब्द विचार पौ सागर तरे रहाउ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी।

हर गुण गावे निज घर वास अमर पद पावे तां दर साचे सुबा पावे गुर सेवा बिन भगत ना होई अनेक जतन करे जे कोई हम मेरा शब्दे खोई निर्मल नाम वसै मन सोई इस जग में।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाणा बोली भाई सुपाई।

सरनाई, मनमुख मुग दया गै चीतै नाही, दुख लागै पछताई। आपे करे कराए करता, जिन एहे रचना रचियै, हर अवमान न जाई जियो, अवमाने पै पचियै। भुलण विच किया सब कोई, करता आप न भुलै। नानक सच नाम निस्तारा, को गुर प्रसाद अकुलै। प्रभाती महला पहला, आखना सुनना नाम आधार। धंधा चुक गया बेकार, ज्यों मनमुख दूजै पत।

लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटै नाम संभाल आपे सदे ढिल ना होए शब्द मरे सहला जीवे सोए बिन गुर सूझी किसै ना होए आपे करै करावै सोए।

कर्म धर्म पथ पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रब रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जीअड़ा तुझ पास ज्यो पावै त्यों रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूत

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपुरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाईऐ, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी,

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय, प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह हउमै मैल उतार, सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार, मन मेरे गुरमुख नाम ते आई जित मार्ग हर पाई है, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हो मैं विच जागरण ना होवई हर भगत ना पवई थाई, मन मुख दर ढोई ना लह भाई दूजै कर्म कमाई, तिग खाना तिग पैनना जिन्ना दूजै पाए प्यार, बिस्टा के कीड़े बिस्टा राते मर जमह होहे खुआर, जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटो बल जाओ तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ, पूरा भाग गुर पाईऐ उपाय कितै न पाया जाई, सतगुर ते सहज उपजै हउमै शब्द जलाई, हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करनै जोग, नानक नाम ना विसरै जो किछ करै सो होग, बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

ऐटिक एक कसकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाल छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कोराय अमृत नाम मन रहया अघाय लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोह तीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दोहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाई अहम एव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग प्रभ

वै भाग ता दर्शन पाई है, आप तरह सब कुटंब तराई है, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किन बिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माहि समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया, रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त।

सोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया।

साई प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ इशनान करीजा चरण कमल निम खरीदै तारी गोविंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रवथान हर जन लावह सहज ध्यान।

ऐ माहे निदाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाउ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

व्यापे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजय शब्द बाजय आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन भीखू बन भीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

आपै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ एहो जियो चितवै सो लहै, अमर हुए सद आखुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तल काती। ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा, देख वैष्णो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दिष्ट रता निस्बादं। रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं, द्वे धोती कर्म मुख खीरं। हृदय छुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस जागस भगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं, ए लंपट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, करि उजल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अपाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया, सब फोकट धर्म अभीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै, बिन सतगुर बाट ना पावै।

सरन लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाउ सुपने ज्यों तन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे।

भज जन्म सिरात है कहूं कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे गोविंद।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक।

पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

प्यार कारण करते वस है जिन काल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानकह मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंगता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामंग नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं।

वर्तंत बनासनंग गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासनंग किरपंत हरियंग मत तत् ज्ञानंग बख्शी देह बुदा कुशल थानंग बसे अंतरिक्षियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेता गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जलंत दे दीपिया भैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग तारन है निर्तनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वच्छल करना मय घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते वपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते वृत्ता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है अरोग्यं महारोग्यं।

पीवतं संतना तृप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते असवरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कण

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कांड मूलं।

पाल नामं रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निरास आस करन सगल अर्थ आलय गुण निदान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करन हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तव लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

त्रंग दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

तरह है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है। भगत वछल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अचुत है। जेन कला धार्यो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा विपरा अमरहीनंग जथा।

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बुजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह भय भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगले अंग रोग खंडन है।

हाथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हं साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो।

गोविंद रमण साध संग मह समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्धिहं बड़ भागन है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम पग

नानक हर पूर्व लिखण है दसन विहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं व्याद उपारण संतं नानक लब्द कर्मण है जात काथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरन है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बडभागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है हर हां कंत बाज शिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागने तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागने हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हरे हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर भये दयाल ता पूरा पाई है मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर।